غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: On the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: 101 FM.
2: Big idea? Check. Passion? Check. लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं. इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं. आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर. एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है.
3: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
4: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
5: Entertainment. हो या अपडेट्स यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त.

0: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech, and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
1: 101 FM.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स एआई सास फिनटेक हेल्थ टेक इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026 रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर
3: यू आर लिसनिंग FM 101 रेडियो पाकिस्तान FM 101 ट्यून इन टू द वन अबव
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: Entertainment, ho ya updates, ye hai tumhari har mood ka dost. Raat, har baat, FM 101 station of the nation.
0: Bigaria, check. Passion, check. The cloud resources to scale, that's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
6: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS, FinTech, HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और तुर्की ने 5 अरब डॉलर की दोतरफा तिजारत के मुत्तफ़िका बाहमी हदफ के हुसूल के अज़्म का इरादा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के अहम तज़वीराती जुग्राफियाई महले वकूअ को दोनों ममालिक के लिए मौशी फायदे में तब्दील करने पर जोर दिया है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में मराकश ने कनाडा को 3-0 जबकि फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech, and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
4: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: Mystery Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है।

0: मगर अब नहीं, इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
4: And now you are tuned into
5: FM 101.
6: FM 101.

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल मिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और तुर्की ने 5 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत के मुतफिका बाहमी हदफ के हुसूल के अज़्म का इरादा किया है। नायब वज़ीरे आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के अहम तस्वीराती जुग्राफियाई मोहल्ले वकूअ को दोनों ममालिक के लिए मुआशी फायदे में तब्दील करने पर जोर दिया है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में मराकश ने कैनेडा को 3-0 जबकि फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हरा दिया। खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब,

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुर अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈ
1: सुनते रहिए FM 101
2: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
3: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
2: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: Freak Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए हैं पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: And now you are tuned into
1: 101 FM. टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है और अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत, सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: सुनते रहिए FM 101।
3: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
4: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज़, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
3: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS, FinTech, HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हेलो, हाँ, where are you? कितनी देर से?
2: I'm on the way यार, बस आधा घंटा दे।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत आपका तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ऐसी

शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.

0: आपने ऐसे मनोवन ट्यून किया?
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
0: शुक्रिया, आपने ऐसे मनोवन ट्यून किया।

0: चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जी, आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें। ignite.org.pk पर।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: चुकी है जिनसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार। महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है और अज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
1: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
0: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार। बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराह में धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या,

0: FM 101.
1: This is FM 101.

10 बज के 12 मिनट पर चाहते हैं सामीन और आपका मेरा साथ रेगुलर प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। राइट ऑफ पाकिस्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान।

देखो कि वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है, और ये चीज मैं बार ना आपसे कह चुका हूँ कि गुजरा हुआ पल, गुजरा हुआ वक्त, कभी गुजरा हुआ जमाना जो है वो वापस नहीं आता है, चाहे लाख आप उसे बुला लें। टॉपिक आप लोगों से जो है वो शेयर करेंगे कि आपको एक चीज अगर सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे, पैसा या पैशन। अगर जिंदगी में आपको कोई एक चीज छोड़नी पड़ जाए, पैसा या कि फिर आप जो करना चाहते हैं

भी क्या जमाना था, अब तो जमाने भी बदल चुके हैं, लोग बदल जाएं तो जमाने से क्या गिला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यू से वेलकम टू द शो एंड हैप्पी बर्थडे। बहुत ज्यादा बहुत जी गुजर चुकी है, अब कल थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। नाइस प्रोग्राम माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आसम गुजर खान से आप सब मौजूद हैं और तेरी खुशी तेरी खुशनुमा आंखों पर बार दो खुद को, दिल में शी बातों को मेरी उम्र लग जाए। वाला हबीबी यार हाँ जजा मौज हजा चल फिल्टर खुलू फिल्टर। मुझे मैसेज है कि अगर आपका दिल माने तो एक सॉन्ग प्ले कीजिए एंड प्लीज डेडिकेट टू माय समवन। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच हीर, आपको आपकी कल वाली जो है वो सालगिरह मुबारक हो और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का।

भी क्या जमाना था है। 10:21 हुआ से आते सामने राम का मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। ठीक रात के 12 बजे तक टॉपिक हम आपको गेम बताए देते हैं कि अगर आपको एक चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ जाए, छोड़नी पड़ जाए या उसकी कुर्बानी देनी पड़ जाए तो क्या करेंगे, पैसा या के फिर अपना जुनून, अपना पैशन। आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस 4471 पर सेल फोन की क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम, उस मैसेज को आप अपने जवाब के साथ लिख भेजेंगे 4471 पर। और फेसबुक पे पोस्ट मौजूद है, कमेंट्स आप कर सकते हैं।

0: तेरी यादों से दूरी बेहतर है, कर दी जीना है मुश्किल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अगेन हैप्पी बर्थडे, जीते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इनामुल हक हमारे साथ मौजूद है। जनावर से सलाम अलैकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को मेरा सलाम, थैंक यू सो मच। जी बर्थडे थी
1: वक्त से टूटा लव
0: नासिर फ्रॉम फैसलाबाद, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। 4471 पे आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस में शामिल कर रहा हूँ।

11 बज कर 26 मिनट हुआ से आते हैं. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स और कॉल्स आप लोगों के भी शामिल करूंगा 10 बजकर 30 मिनट की ब्रेक के बाद.

क्या खूबसूरत वॉइस है वैसे। बहुत देर बाद इन्होंने इतने कवर्स गाए हैं, लोगों के सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन इनका वो वाला सॉन्ग आज तक मुझे नहीं मिला। मुझे आज किसी ने मैसेज भी इसमें 447 ने किया कि लास्ट आपने एक सॉन्ग गुनगुनाया था, बहुत अच्छा था। मुझे ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तानी है भी है नहीं, मैंने गा दिया था।

स्पेशली जो ड्राइव करते हुए मैं सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन ड्राइव वेरी केयरफुली, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। कि आपकी जिंदगी के साथ बहुत सारी खूबसूरत जिंदगियां जुड़ी हैं, स्पेशली जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें सुन रहे हैं, ड्राइवर पे जरा थोड़ा सा एहतियात से। और हाँ, आज तो हमने एक, पहले मैं उनको कॉल करके पूछ लूं कि क्या वो मुझे सुन रहे हैं। आज एक इत्तेफाक हुआ कहीं पे,

0: We'll be back after the short commercial break.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म। हर बार महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
3: Station for Civilization 101 Hits FM.
4: Here is Morocco New, baby. Check this out.
5: Yeah, yes, salam.
4: You feel me, baby?
5: Spread love. Yes, salam alaikum. Yeah. Salam alaikum.

0: 0501001001 शॉर्ट सी बात करेंगे जी, बहुत लंबी जोड़ी नहीं लगानी है।
1: अबाबिया नया हलाल कलम, सलाम अलैकुम रिदू सलाम।
0: सर जी आप लोगों की कॉल्स 0501001001। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर टू टू टाते साथ ही आपने टू टू। अच्छा जी देखते हैं जी नेक्स्ट कौन है, कहां से है। So, आप लोगों की कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
2: ये सब भाई की हाल है, खैरियत है?
0: शेर वाले भाई कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरी सालगिरह मुबारक हो।
0: वाह, गुजरी हुई सालगिरह लंग गई उन।
2: हां

0: जी कुछ रीजन लैंग्वेजेस होती हैं और उनका अपना एक देश होता है। ये हमारी अपनी जुबान है जी, पहाड़ी जुबान है। यहाँ जी बहुत सी साहब सया नहीं होना। हाँ हाँ जी जी, मजीद आप लोगों की कॉल शामिल करते हैं जल्दी से और देखते हैं कौन कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। फोन है जो बाहर आना है तुसी।
1: सितारा
0: इस्लामाबाद से। सितारा कैसी हैं आप? ठीक हैं
1: जी,
0: मैं दरमियाना सा। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी आप सितारा? क्या चीज सैक्रिफाइस कर जाएंगी आप, पैसा या पैशन?
1: पैसा।
0: पैसा
1: जी। बहुत टाइम बाद आपसे बात हो रही
0: है। अच्छा, बहुत दिनों बाद बात हो रही है
1: जी। आप बहुत मुश्किल टॉपिक रहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं
0: आया। मुश्किल टॉपिक इसमें क्या है, सब तो आसान आसान है इसमें।
1: बहुत मुश्किल
0: लगता है। अच्छा ठीक है, खैर खैरियत है
1: जी, खैर
0: चलें ठीक है।
1: ओके बाय।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस में मेरे जो क्लीग है वो कहते खैर खैरियत है, खैर खैरियत है, सब खैर खैरियत है। वो मुकदा ही नहीं है खैर खैरियत है। चूँ शामिल करो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, मैं तो उस्ताद उठना, मैं तो फोस्की
2: मैं जी राती मैं तो की बात पहुंची की थी।
0: जी जी पहुंची की, मैं नाल कमरे सुता सा। हेडफोन लाए
2: माड़ी
0: भी तो सुनो ना, इतना पूरी दुनिया डिस्टर्ब होनी थी। पूरी दुनिया डिस्टर्ब होनी, इसकी लाओ। हाँ ओ मां सदके जाए, उस्ताद ने शागिर्द
2: मां सदके, मैं बहुत ज्यादा मैं भी आना होना
0: मां। इश्तियाक साहब, तुसा अगर सुनने पियो ते जेड़े तुसा ए टूटियां लाई है ना कि लाओ ताके पूरी दुनिया जेड़ी सुननी पी ना, ओ ओखी होनी पी। तुसा की ते सहूलत थी, लेकिन बाकी बेचारे हैं भी जेड़े ना, उन्होंने करना है दर्द। उसी मेहरबानी करो, जे तुसा अगर दोबारा कॉल कर सो ना, ते ना हेडफोन की लाई कॉल करे। पटवारी शनी ना जी क्या करिए, अपनी जुबान आई है सारी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से?
1: क्या
0: रही सब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ करवा दें, कौन कहां से?
1: हमना फ्रॉम जर्मनी।
0: हमना फ्रॉम जर्मनी।
1: यस।
0: ए लक्ष्मी चौक में ना लला। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हूं तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। मन गया जी, है अपारा तो परे भी एक है जर्मनी। ठीक हो गया, तो टॉपिक के वाले से क्या कहना चाहेंगी? एडे सस्ते जर्मनी है, लेके थोड़ा जो है ना बैलेंस है, बैलेंस ही कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तरह करा देते मेरा
1: जी। आप
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, तारुफ करवा दें, कौन कहाँ से?
1: मैं सोबिया हैदराबाद से।
0: सोबिया हैदराबाद से, कैसी हैं आप? ठीक हैं
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत सुनती हूँ, लेकिन आपको कॉल फर्स्ट टाइम लगी।
0: हाँ, उसके लिए बैलेंस होना लाजमी है ना
1: जी। और आप ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कोई एक चीज अगर आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ जाए तो क्या करेंगी, पैसा या कि पैशन?
1: पैशन पैशन
0: पैशन, मतलब पैसा लाजमी है ये होती है रियलिटी, जो लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं है, ऐसे ही होता है ना।
1: पैशन अच्छा नहीं लगता ना,
0: बगैर पैसों के पैशन क्या करेंगे
1: जी।
0: हाँ ठीक हो गया, और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: नहीं नहीं बस।
0: ओके थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 2026 ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया जी। ये मैंने आपको एक शॉर्ट सी न्यूज़ जो है वो दे दी है, और पाकिस्तान का बहुत ही इस साल जो बैड पैच चला है।

10:46 हुआ साथ है सामीन और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके सुनने का। और एक रिक्वेस्ट है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जैन फ्रॉम फैसलाबाद, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का। चाहे दुनिया हो खफा,

0: ओके जी, दिस वस्कर हुआ से आते हैं 52 मिनट 101 टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और आप लोगों के मजीद पार्टिसिपेशन को मैं साथ साथ शामिल कर रहा हूँ। आपकी कॉल्स 0501111001। अस्सलामुअलैकुम। हेलो
1: जी, अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी,
1: क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
0: शुक्र अल्लाह का, तारुफ करवा दें, अपना कौन बोल रहा है, कहाँ से?
1: जी मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ, शादबा लाहौर से। जी
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: हाँ, बहुत खुशी वाली बात है, आपकी सालगिरह, मुझे बहुत आपको बहुत ही मुबारक हो, बहुत खुशी वाली बात है जी। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
1: तो जिंदगी में ना देखे, जो ये फैशन है ना, ये छोड़ जा सकता है तो पैसा नहीं छोड़ा जा सकता जी।
0: लोग रियलिटी को समझते हैं,
1: पैसे के बिना जो है ना ये जिंदगी नहीं चलती, बहुत मुश्किल हो जाती है पैसे के।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: हाँ जी, फैशन छूट जाए वो कोई बात नहीं, पैसा नहीं जाना चाहिए, ये नहीं छूट।
0: ठीक हो गया, सही हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बड़ी मेहरबानी आपके लिए, बहुत ही बहुत ही दुआएं, और जितने बहन भाई आते हैं सबको मेरा सलाम। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका शो, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: अस्सलाम जी, कौन कहां से?
2: होर
0: सुनाओ, ठीक हो? वधिया तुसी?
2: हाँ मैं भी ठीक ठाक हाँ। अगर बोझी जे रुपया होना वा ते बाहर निकल जा जाना वा ते फिर फैशन करना वा, अगर पैसा होना ते फैशन होना वा।
0: फैशन नहीं है, पैशन होता है, जज्बा, लगन, जो काम आप करना चाहते हैं ना, जो आप ये पैशन होता है उसको जज्बा लगन।
2: वो ते बंदा फिर पैसे तो बगैर भी कर सकता वा,
0: मतलब। अच्छा वाह। जवाब नहीं आ रहा, क्या पता किथे टुरते नहीं गए।
2: नहीं नहीं, लेकिन जरा तुसी गाना सुनाया ना मेरी हसंदी आवाज, बहुत ही मीठा जिहा गाना सी इह।
0: हां मैं शीरे भगो भगो के मारिया ना।
2: हां जी, ओ भी गल पता हैगा वा। अच्छा सलामाबाद भी करनी पै रही है।
0: आ गरीबो। हाय हाय, पैसा हो तो बैलेंस भी होगा ना, ये तो पैशन की गल हो रही है, वो फैशन समझ देना है।

0: संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के लिए है पुरअज़्म हर बार। महफूज है जाए मुलाजमत सभी घर और हर बाजार।
2: आपकी हिफाजत, आपका तहफ्फुज, आपकी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है।
1: तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का कायम, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फनाह में धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। जिंसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक। मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत। खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान। हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान। हुकूमत पंजाब।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: वेलकम टू द फैमिली शो। शबनम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कमेंट का। हामिद चान करंगी नंबर 2 कराची से आप हमारे साथ मौजूद हैं। कि शराफ हैप्पी बेलेटेड बर्थडे स्वीट आर्जे, केक खिलाइए जैसे कि आप موجود ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟
4: الحمدللہ۔
3: السلام علیکم یوسف۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نذیر کھوسو ہیں جی صحبت بلوچستان سے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ عبدالستار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم عباسی کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، شب بخیر، سب کو میرا سلام۔ سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ ملک وسیم اوان، بہت عمدہ پروگرام۔ ओके जी, और सईद मोहम्मद साहब मौजूद है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का भी। और सलाम वेलकम टू स्वीट हार्ट सेफ फ्रॉम क्वेटा मून स्टार क्लब खान नूर जई, सलाम टू

0: अभिषेक गणेश जी, आप अपनी पिक्चर लगाए घर में यहाँ पे पोस्ट पे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसलिए वैसे क्या है, वैसे तस्वीर देख के क्या करना है? मैं बार बार इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जिन्होंने देखे वो रजे पे रहे थे, तुसी की करना है देख के? मैंने
1: तेरा

0: इन आंखों का ख्याल गर्मियों के लिए लाइन नहीं बोलना चाहता क्योंकि कन्ना तो तुम वैसे बाहर टूटी ना आकर तुम कॉलिंग कर दे है। मैं उसे वैसे सुन रहा था, मैं किसी काम से आया था, रेडियो कुछ रिकॉर्डिंग थी, तो ए भाई साहब सिद्धू है नी कराची वाले में लाहौर में थे। ओ मैं बिज मिला कराची आज इन्हें रामन तो आए और लाहौर ही फिर थोड़े सिद्धू रहा ने टॉपिक है प्रोग्राम में कि आपको एक चीज अगर सैक्रिफाइस करनी पड़े तो क्या करेंगे, पैसा या के पैशन, अपना जज्बा, या जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वो। ठीक ठाक, कौन कहाँ से? जुनीवत गली लाहौर से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। जी जुनी,
1: एक्चुअली आपने कहा ना कि आज सब शोर शोर बात करेंगे, इसलिए सभी लोग वैसे आ रहे हैं जिनके बंद शॉप है ना।
0: इसलिए लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो पैशन को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, पैसे को करेंगे, तो पैसा जरा कुछ आया फिर।
1: अरे वो जाहिर है पैसा, पैसे को चूज करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो पैसे से सब चीजें ले सकेंगे ना, चाहे वो फैशन हो चाहे कुछ भी।
0: वो किसी ने बड़े फनी सी एक कोई वीडियो थी कि कहते हैं कि मैं महंगा गल कर रहा हूँ पंजाबी में ना, कि मैं महंगा गल कर रहा कि तू कितना कुछ महंगा, मेरे जे मोबाइल टोटल 50 रुपया पे आवा, मैं इतना कुछ महंगा।
1: एक्चुअली आपका बर्थडे कल था लेकिन आपको सारे आज करेंगे क्योंकि कल आपको प्रोग्राम नहीं होता ना, इसलिए आपको है
0: ठीक है, लता आपको खुश रखिए और वैसे
1: आपको प्रोग्राम
0: हमेशा
1: की तरह बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मैं तो भी तेरे के नाफिल।
0: तो आपने टॉपिक के बारे में बात ही नहीं की।
1: सॉरी मुझे समझ नहीं आई।
0: आपने टॉपिक के बारे में बताया नहीं।
1: मैंने बता दिया, मैंने कहा कि पैसा हो ना तो फिर उससे आप सब कुछ कर सकते हैं।
0: पैसा जो है वो मेन चीज है
1: जी, सिर्फ आप आज पैसे को सैक्रिफाइस करेंगे तो अगर पैसे को सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो पैसे ही करना उससे, लेकिन चंगा माड़ा फिर भी इंसान कर सकता है ना उससे,
0: पैसा कमाने के लिए काम करें और पैशन को इतना मजबूत बनाएं कि एक दिन वो भी पैसा कमा के दे। अच्छा, बहुत ही डूंगी गलां कर दे जी तुसी, और बड़ी वैसे वैल्यूएबल बात थी। इतना वैसे दिमाग पता नहीं कैसे चल जाता है हमारा, तो बिल्कुल इस वक्त गर्मी में मत मारी है। कॉल्स भी कॉल्स आती जा रही है तो कॉल्स को ज्यादा इंटरटेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन? नरे बारान दे इतनी गर्मी केड़ी बारान आ गई नरे अली
2: फरमाइश पूरी कर
0: छोड़ी नरे बारान।
2: हाँ जी
0: चलो, मैं देखना, मैं प्रॉमिस नहीं करना क्योंकि अचानक मेरे साथ ना ऐसे मसला होता है कि हमारे काफी सारे जो दोस्त है ना 101 पे, वो सॉन्ग्स को डाउनलोड करते हैं डायरेक्टली है, फिर उसके अंदर कुछ एड्स भी होते हैं, कोई वेबसाइट का जिक्र होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ ये सारी चीजें मैं एडिट करके मैं वो शामिल करता हूँ, लेकिन मैं अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं जरूर चला देता हूँ, ये प्रॉमिस है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। 0511111001 Just in case you forgot, my name is Muhammad Yusuf.

वक्त स्वागत है 11:19 और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। टॉपिक के हवाले से कुछ पार्टिसिपेशन अब कम है।

0: कुछ मजीद एक दो कॉल्स शामिल करते, फिर उसके बाद हमने अपने सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, ओल्डी गोल्डी नंबर्स की तरफ, तो फिर कॉल्स उसमें शामिल नहीं कर पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: मैं लाहौर से बात कर रही हूं।
0: हेलो
1: हेलो, आवाज आ रही है?
0: जी जी आ रही है।
1: मैं लाहौर से बात कर रही हूं।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: क्या कहना चाहेंगे, टॉपिक क्या हमारे से क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, टॉपिक अच्छा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या चीज सैक्रिफाइस जो है वो करेंगी, पैसा या कि पैशन?
1: पैसा।
0: ठीक, अच्छा ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी सुनाए। थैंक यू सो मच। हाय हाय हाय, कि तूने मुझे बुला दिया कैसे, और चुटकी बजा के कहा ऐसे ऐसे और ऐसे। और किसी को हमें समय साथ साथ देखते हैं कौन कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने मेडिटेशन का सॉन्ग लगाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत
0: टॉपिक सुना आपने? टॉपिक सुना आपने?
2: अभी सुना है, अभी
0: जी। क्या कहना चाहेंगी, पैशन या के फिर पैसा जो है वो छोड़ना चाहेंगी आप? एक चीज छोड़नी है, क्या चीज सैक्रिफाइस, क्या चीज कुर्बान कर सकते हैं अपना?
2: पैशन।
0: अच्छा, पैसे के साथ जाएंगी आप? बोरा चुप
2: हो
0: तो ले जाओ, ठीक हो गया। पैसा, ठीक हो गया। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आपकी कॉल का 051111001। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
3: कॉल कट हो गई थी,
0: वो तो
3: वो हाँ
0: ना, वो गरीबा ने क्या, कौन से मुल्क में आप? गरीबों ने जर्मनी में, तो फिर ऐसे ही होगा ना? नाम जर्मनी का इलाका जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी बताए। जी जी आ रही आ रही है।
3: टॉपिक तो वही लेना चाहूंगी।
0: जी जी,
3: पैसा।
0: ओ प्यार, बोरा चुको ले जो, एक एक रुपए सिक्के पे ने सारे गिनने तुसी शाम तक बह के।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पैसा ही करूंगी।
0: पैसा, हाँ ठीक हो गया, सही है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। और कुछ याद आ गया वैसे? मैं अब क्या कहूँ, फिर ऐसे ही हंसा निकल जाएगा मेरा।

0: कि जी आपके मिजाज के मुताबिक एक सवाल है कि मोहब्बत इंसान से क्या मांगती है।
1: चांद शर्माएगा चांदनी।

0: after the shy commercial break.
1: टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के टूट चुकी है जिंसी तशद्दुद की हर दीवार, महफूज खवातीन के लिए हुकूमत

पुलिस हेल्प का हुसूल, वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ्फुज, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए दही खवातीन का इजरा, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा, जिनसी तशद्दुद के खात्मे का एहसास पूरे पंजाब की हर बेटी तक, मरियम नवाज शरीफ की खवातीन से मोहब्बत, अकीदत और शफकत, खवातीन का तहफ्फुज बन चुका है पंजाब की पहचान, हर औरत है बाइख्तियार, बढ़ रहा है सभी का मान, हुकूमत पंजाब

हमेशा होता है खुद को बांटने वालों का अंजाम नहीं। पहले पहल वही लोग ग्रांस से हटाए जाते हैं और दुनिया जिनके वफाओं के चराग जलते हैं वो जमाने की महफिलों में सताए जाते हैं। के सच्चे लोग अक्सर आजमाए जाते हैं, भलाई के सिले में जख्म खाए जाते हैं। हमेशा होता है खुद को बांटने वालों का अंजाम यही। पहले पहल वही लोग से हटाए जाते हैं।

Budapest. Szállni beraber.

मुर्शिद जी नाराजी हो गए। सफाई

जी अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, आप लोगों से इजाजत लेंगे कि तुम्हें वही शख्स बर्दाश्त कर सकता है जिसकी रूह में तुम्हारी रूह का अक्स होता है, और तुम्हें वही शख्स याद करेगा जिसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में दुनिया को एक अजनबी की तरह महसूस किया।

आप या इन नैनों में जो पलक धाम तो हेलूं ना मैं देखूं और को ना तू है देखन दूं। I had a wonderful time। अगली मरतबा जब मुलाकात होगी और जब भी मुलाकात होगी होपफुली एक नए अजम के साथ और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, ये आपने साबित करके दिखाना है। यू डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है या तन्हाई ये न मालूम था हमें, करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें। अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें, आ जाना मिटा जाना इस तन्हाई को कि फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़।

أمري كن فيكون. ए मेरे कुनफा यकून, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। ए मेरे कुनफा यकून, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। तेरी मर्जी है मुझे तोड़ दे और फिर से बना, फिर मुझे खाक नशीन करके यूं ही जीना सिखा। मेरे अंदर जो खला है मेरे मौला भर दे, जो खास तवज्जो से बनाया है ये दिल, इसको मिट्टी में मिला दे, इसको मिट्टी में मिला दे या तो पूरा कर दे। मेरे खालिक, में तेरे कुन की तलब में जिंदा हर घड़ी एक कयामत से गुजर जाता हूं। इतनी शिद्दत से मेरा पहलू सुलग उठता है, दर्द की हद से गुजर जाता हूं, मर जाता हूं। ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे कुन फाया कुन।

और यूं है जनाब कि कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बात जो आप समझते हो कि समातों तक पहुंचे और किसी का भला हो सके, ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई ऐसा इज़्तिराब जो आपको तंग किए हुए हो और आप उसका हल तलाश कर रहे हों, और कुछ बन ना पाता हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है जनाब। आप प्रोग्राम में शिरकत करके ऐसी कोई बात शेयर कर सकते हैं, और जो समातें आपकी परेशानी का हल जानते होंगे वो भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। यूं आसानियां बांटने का ये एक सिलसिला भी जुटा रहेगा। मेरा साथ देते रहिएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा।

मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं। एक कूजे के तसव्वुर से जुड़े हम दोनों, नक्श देता हुआ तू, चाक घुमाता हुआ मैं। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूं कहीं कहीं दूर से आता हुआ मैं। और एक तस्वीर की तकमील के हम दो पहलू, रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं। मुझको ले जाए कहीं दूर बहाती हुई तू, तुझको ले जाऊं कहीं दूर उड़ाता हुआ मैं। एक इबारत है जो तहरीर नहीं हो पाई, मुझको लिखता हुआ तू, तुझको मिटाता हुआ मैं। और मेरे सीने में कहीं खुद को छुपाता हुआ तू, तेरे सीने से तेरा दर्द चुराता हुआ मैं। कांच का होके मेरे आगे बिखरता हुआ तू, किरचियों को तेरी पलकों से उठाता हुआ मैं। एक कूजे के तसव्वुर से जुड़े हम दोनों, नक्श देता हुआ तू, चाक घुमाता हुआ मैं। एक तस्वीर की तकमील के हम दो पहलू, रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं। मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं। गीत होता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं।

खुली जो आंखें तो सर पे नीला फलक तना था, खुली जो आंखें तो सर पे नीला फलक तना था, चार जानिब स्याह पानी की तुंद मोजों का गुलगुला था। हवाएं चीखों को और कराहों को लेके चलती थीं और मिट्टी की जर्द खुशबू में मौत मौसम का जायका था। नजर मनाजिर में डूब कर भी मिसाले शीशा तही थी, यानी गुल तमाशा नहीं खुला था। हिरास जज्बों की राह गुजर में दिले ताज्जुब ज़दा अकेला खामोश तन्हा भटक रहा था। हिरास जज्बों की राह गुजर में दिले ताज्जुब ज़दा अकेला खामोश तन्हा भटक रहा था कि एक साए की नरम आहट ने रास्तों का नसीब बदला। कोई ताल्लुक के चांद लहजे में अपने पन की अदा से बोला, मेरे मुसाफिर उदास मत हो, मेरे मुसाफिर उदास मत हो कि अहद फुरकत ही जिंदगी है। ये फासलों की खलीज राहे विसाल है और तलब निगाहों की रोशनी है। तमाम चीजें तुम्हारे मेरे बदन के रिश्तों का सिलसिला है, तमाम चीजें तुम्हारे मेरे बदन के रिश्तों का सिलसिला है। तुम्हें खबर है कि हम समंदर और आसमानों की इंतहा है।

जी हजरत, शेर व शायरी और शेर व शायरी में हमेशा से एक नुमाया मकाम हासिल जज्बों को, एहसासात को, और इन जज्बों में सबसे नुमाया जज्बे मोहब्बत और नफरत के, इनका जिक्र किए बिना शायरी मुकम्मल हो नहीं सकती है। क्या है कि मोहब्बत अपनी ज़ात के अंदर जो शिद्दत रखती है, उस शिद्दत को महसूस कर लेता है जब इंसान, तो दीगर तमाम जज्बों से आशना हो जाता है। और शायद इसीलिए ज़रूरी हुआ करता है यह मुंजबित जज्बा इंसान की ज़ात के अंदर किसी न किसी तमकिनत से पिघलता हुआ, और पिघलना चाहिए भी ताकि आशना हो सके दीगर तमाम जज्बों से। लेकिन जब तक ये जज्बा पनप रहा होता है, वो दौर और वो खूबसूरत दौर, वो हर इंसान की जिंदगी में खूबसूरत ही रहता है, कभी मांद पड़ता नहीं है। कैसी अजीब बात है, हम इंसान अपनी जिंदगी के किसी भी दौर पर नजर डालें, जो कुछ बीत चुका होता है वो धुंधला हो जाता है, और हम सिर्फ उसको याद रखते हैं जो हमारे पास हासिल रह जाता है। वाहिद ये मोहब्बत का जज्बा है जिसमें अशिया जिंदा रहती हैं, जिसमें एहसासात जिंदा रहते हैं, जिसमें मकाम जिंदा रहते हैं, जिसमें खुशबू जिंदा रहती है, कुछ अशार जिंदा रहते हैं, कुछ सूखे फूल और उनकी खुशबू। ऐसी मासूम सी बातें हुआ करती हैं, ऐसी मासूम सी अशिया हुआ करती हैं जो मोहब्बत का जज्बा अपनी ज़ात के अंदर रखता है। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। सैर नहीं होते हैं हम इंसान, और यूं तो कभी भी नहीं हुआ करते हैं, सब कुछ हमें कम ही पड़ता है। वो जो इरादा और इख्तियार हमारी ज़ात के अंदर है, वो न जाने हमसे क्या करवाना चाहता है कि हम किसी चीज़ पर इक्तफा करते ही नहीं हैं, रुकते ही नहीं हैं, हमारा जी भरता ही नहीं है। या अगर दरिया को कूजे में कैद करूं तो तमानियत इत्मीनान हम इंसानों को कभी मुयस्सर आता नहीं है, लेकिन जीना चाहते हैं और जीना जानते भी हैं, और जी लिया करते हैं उन लम्हों को जो लम्हे खूबसूरत होते हैं या हम खूबसूरत बनाते हैं। और तन्हा तो हम इंसान रह नहीं सकते, किसी का वजूद हुआ करता है हमारे साथ जो लम्हों को बदल दिया करता है, जो रंगों में रंग भरता है, जो माहौल में मौसीकी भरता है, जो हमें हकीकी मायने सिखाता है कि मौसीकी क्या हुआ करती है। जो रंगों में रंग भरता है, जो माहौल में मौसीकी भरता है, जो हमें हकीकी मायने सिखाता है कि मौसीकी क्या हुआ करती है।

और ये मोहब्बत का जज्बा इंसान को न जाने क्या कुछ सिखाता कहां ले जाता है। लेकिन कुछ हुआ करते हैं जो उस आगाज में ही रहते हैं और वह आगाज खूबसूरत लगता है, लगना भी चाहिए। और वह एक वजूद और उसका साथ, और वह एक लम्हा, वह एक लम्हा जो बीतता नहीं है, जो गुजरता नहीं है, जो सदियों पर मुहित हुआ करता है। वह एक लम्हा जिसको हम गिरफ्त में करना चाहते हैं, जिसको कैद करना चाहते हैं और अपने तसव्वुर के जोर पर कैद कर भी लिया करते हैं, और जब चाहें उस लम्हे को जी भी लिया करते हैं।

हमारे साथ कोई तीसरा ना था, हम थे, हमारे साथ कोई तीसरा ना था, ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुना ना था, हम थे हमारे साथ कोई तीसरा ना था, ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुना ना था, आंखों में उसकी तैर रहे थे हया के रंग, पलके उठा के मेरी तरफ देखता ना था, कुछ ऐसे उसकी झील सी आंखें थी हर तरफ, हमको सिवाय डूबने के रास्ता ना था, हाथों में देर तक कोई खुशबू रची रही, दरवाजा ए चमन था वो बंदे कबा ना था, उसके तो अंग अंग में जलने लगे दिए, जादू है मेरे हाथ में मुझको पता ना था, सांसों में थे गुलाब तो होंठों पे चांदनी, इन मंजरों से मैं तो कभी आशना ना था, और रोया कुछ इस तरह मेरे शाने से लग के वो, ऐसे लगा कि जैसे कभी बेवफा ना था, है इश्क एक रोग मोहब्बत अजाब है, एक रोज ये खराब करेंगे कहा ना था, हम जद वहां पे हद कोई रहती भी किस तरह, रुकने को कह रहा था मगर रोकता ना था, हम थे हमारे साथ कोई तीसरा ना था, ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुना ना था। कुछ ऐसी उसकी झील सी आंखें थी हर तरफ, हमको सिवाय डूबने के रास्ता ना था।

शबे गम की दराजी जुल्फे जाना कौन देखेगा। शबे गम की दराजी जुल्फे जाना कौन देखेगा। लगाकर तुमसे दिल ख्वाबे परेशान कौन देखेगा। हमें भी जलवागाहे नाज तक लेकर चलो मूसा। तुम्हें गश आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा। मैं खुद इकरार कर लूंगा कि मैंने जान खुद दी थी। मैं खुद इकरार कर लूंगा कि मैंने जान खुद दी थी। सरे महशर भला तुझको परेशान कौन देखेगा। पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे। पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे। तुम्हें देखेंगे सब महशर में दामा कौन देखेगा। मैं खुद इकरार कर लूंगा कि मैंने जान खुद दी थी। सरे महशर भला तुझको परेशान कौन देखेगा।

मुझे शौक था तेरे साथ का, मुझे शौक था तेरे साथ का, जो ना मिल सका चलो खैर है। ये जो बेबसी है चार सू और उलझे उलझे से तौर है, तुझे सब खबर है मगर तू क्यों ना समझ सका, मगर तू क्यों ना समझ सका चलो खैर है। मैंने खुद नुमाई कभी न की, मुझे किसी से गिला भी क्या, वो समझ ना पाए सदाए दिल, मैं भी चुप रहा चलो खैर है। ये घुटे घुटे से हैं सिलसिले, ये रुके रुके से ताल्लुकात, न मैं कह सका कभी खुल के कुछ, न तू सुन सका चलो खैर है। शबे हिजर इतनी तवील थी, शबे वसल भी तो दराज थी, मैंने सब कहा था बहुत मगर अभी रह गया चलो खैर है। मैं कहूं तो कैसे कहूं तुझे, मेरे शहर दिल में रुके रहो। मैं कहूं तो कैसे कहूं तुझे मेरे शहर दिल में, शहर दिल में रुके रहो, यही सोच थी मेरी सोच में, तू चला गया चलो खैर है। यूं ही धीरे धीरे खत्म हुआ ये भी सिलसिला चलो खैर है। मुझे शौक था तेरे साथ का, जो ना मिल सका चलो खैर है।

हजूर, ये जो साथ का शौक हुआ करता है, यूं एक शेर में बयान कर देना तो शायद आसान ही होगा। आसानियों के चंद सत्र ही तो हैं, लेकिन अपनी जात के अंदर बहुत मुश्किलात रखता है ये शौक, साथ का शौक। हमें कुछ रिश्ते मयसर आते हैं जो हमारे इख्तियार में हुआ नहीं करते हैं और हमसे कुदरत मंसूब कर दिया करती है। उन रिश्तों को हमें कबूल करना होता है, वो जैसे भी हो हमारे दिल अजीज हुआ करते हैं, और इस अजीज़ के सफर में लोग हमसे मिलते हैं, हमसे जुड़ते चले जाते हैं। कोई साथ चंद लम्हों का हुआ करता है, कोई साथ सदियों पर मुहित हो जाता है। और वहां कोई साथ ऐसा हुआ करता है जिसमें एक शौक पैदा हो जाता है कि ये साथ कभी खत्म ना हो। उस साथ में जो शिद्दत हुआ करती है, उस वजूद में जो ऐसा साथ हुआ करते हैं, इंसान ना जाने किस शय से मरूब हो जाता है कि उस साथ के बिना फिर वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। और ये वक्त कैसी अजीब चीज है, हमें गुजारना मुश्किल होता है लेकिन ये ठहरता नहीं है। बस हमारे जहन में, हमारे तसव्वुर में, या यूं कहिए कि हमारे एहसास में लम्हे सदियों पर मुहित हो जाते हैं, और कभी सदियां लम्हों में बीत जाया करती हैं। इसी तगड़ो में जिंदगी गुजार दिया करते हैं हम इंसान, इन फलसफों को समझने में। कभी हम सोचते हैं कि ये क्या बोरिंग बातें हैं, हम इनमें क्या तवज्जो दें, लेकिन जब गुजरती है, जब इंसान को बीतना पड़ता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि ये क्या था। कोई इंसान ऐसा नहीं जो मोहब्बत के जज्बे से मुबर्रा हो सके। मेरा ये मानना है कि ये जज्बा इंसान की जात के अंदर वदियत कर दिया जाता है, जो मुंजमित तो रह सकता है, लेकिन यूं नहीं हो सकता कि कोई इंसान इस जज्बे से मुबर्रा हो। जब यह जज्बा पिघलता है और उसके सामने आन खड़ा होता है, तो फिर लिखने वाले लिखते हैं कि मोहब्बत वो पिंजरा है जिसमें इंसान खुद को अपनी मर्जी से कैद रखता है, जबकि उसका दरवाजा खुला होता है। और वह जो साथ का शौक जिसका जिक्र कर रहा था, वो शौक भी पूरा होता चला जाए और एक दिन ऐसा आए कि मैंने माना जुदाई मेरा मुकद्दर है, मगर ये बात ना मुंह से कहो खुदा के लिए। हमारी जिंदगी की वो अद्वार जब हमें कुछ हकीकतों को मानना पड़ता है, लेकिन हम उन हकीकतों का सामना करना नहीं चाहते हैं। हमें यूं लगता है कि हम किसी और दुनिया में चले जाएंगे और ये हकीकतें हमारे साथ शायद ना हों, या यूं कि हम उनसे मुंह फेर लिया करते हैं और समझते हैं कि शायद चंद लम्हों की तमानियत, चंद लम्हों की सहूलत हमें मयसर आ जाएगी।

उनकी बताए नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई और हम क्या ही गुजारते हैं हुजूर, ये वक्त तो है जो बीतता है और बीतता चला जाता है। हम तो खुद को दाखिल किया करते हैं इस वक्त में, अपने आप को मनवाने की काविश हुआ करती है, हमें कहीं से कोई हमदर्दी चाहिए होती है या हमें यह दरकार होता है कि हमें माना जाए, हमारे वजूद को तस्लीम किया जाए। अगर गौर करें तो हम अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें तस्लीम किया जाए, हमें माना जाए, हमारा इकरार किया जाए। और जब इसको महदूद कर दिया जाता है दो लोगों में, ये किसी एक शख्स के साथ जिसके साथ का शौक हुआ करता है, तो फिर यही कुल कायनात होती है, फिर यही सब कुछ होता है, वही दौर होता है और वो आने वाली जुदाई, वो लम्हे जिनका सामना करना पड़ता है और जो गिरफ्त में आ नहीं रहे होते। उनको यूं तस्लीम करना पड़ता है कि अपने तसव्वुर में, अपने तखय्युल की दुनिया में वसल के लम्हों को जिंदा रखते हैं, उनको खत्म नहीं होने देते, उनको मरने नहीं देते। हम इंसान जो अपने तसव्वुर के जोर पर कुछ भी कर सकते हैं, फिर खुद से बातें करते हुए कुछ पन्नों पर कुछ सतरें लिखते हुए ये गुमान कि हमारा पैगाम बयान ही उसे एक वजूद तक पहुंच रहा है जिसके साथ का शौक था और वो साथ अब मयसर नहीं, लेकिन जो एहसासात जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे वो गिरफ्त में रहते हैं। ख्वाहिश होती है तो बस ये कि वहां तक पहुंच सकें।

उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। याद है हम तुझे दिल मानते थे, अपने सीने में मचलता हुआ जिद्दी बच्चा, तेरे हर नाज को उंगली से पकड़कर अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे। तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन के तमन्नाओं की बिनाई से हम देखते थकते ही न थे। सोचते थे एक छोटा सा नया घर, नया माहौल, मोहब्बत की फजा हम दोनों और किसी बात पर तकियों से लड़ाई अपनी, फिर लड़ाई में कभी हंसते हुए रो पड़ना और कभी रोते रोते हंस पड़ना और थक हार के गिर पड़ने का मासूम खुश बख्श ख्याल याद है। याद है हम तुझे सुख जानते थे, हम तुझे सुख जानते थे। रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था याद है। याद है हम तुझे जान कहते थे, तेरी खामोशी से हम मर जाते, तेरी आवाज से जी उठते थे। तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी, शरियानों में थाम लेने से कोई शहर सा बस जाता था वीरानों में। याद है हम तुझे मिलने के लिए वक्त से पहले पहुंच जाते थे और मुलाकात के बाद हम बहुत देर से घर आते थे। बहुत देर से घर आते तो कहते कि हमें कुछ ना कहो, हम बहुत दूर से घर आए हैं, इस कदर दूर से आए हैं कि शायद ही कोई आ पाए। याद है हम तुझे भगवान समझते थे मगर कुफ्र से डर जाते थे, तेरे छिन जाने का डर ठीक से रखता था मुसलमान हमें। हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, तेरे भूले हुए रस्तों पे लिए फिरता है ईमान हमें और कहता है कि पहचान हमें। याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे। हाँ किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ।

बस शामें उजाड़ रस्ते कभी बुलाएं तो लौट आना। उदास शामें उजाड़ रस्ते कभी बुलाएं तो लौट आना। किसी की आंखों में रत जगों के अजाब आए तो लौट आना। अभी नई वादियों नए मंजरों में रह लो मगर मेरी जान, ये सारे एक एक करके जब तुमको छोड़ जाएं तो लौट आना। नए जमानों का कर्ब ओढ़े ज़ईफ लम्हे निढाल यादें, तुम्हारे ख्वाबों के बंद कमरों में लौट आए तो लौट आना। और अगर अंधेरों में छोड़कर तुमको भूल जाएं तुम्हारे साथी, और अपनी खातिर ही अपने अपने दिए जलाएं तो लौट आना। मेरी वो बातें तू जिन पे बेख्तियार हंसता था खिलखिलाकर, बिछड़ने वाले मेरी वो बातें कभी रुलाएं तो, मेरी वो बातें कभी रुलाएं तो लौट आना। नए जमानों का कर्ब ओढ़े ज़ईफ लम्हे निढाल यादें, तुम्हारे ख्वाबों के बंद कमरों में लौट आए तो लौट आना।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन है जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी खूबसूरत समातों की नज़र कर रहा हूं। 1:17 हुआ चाहते हैं, 2 बजे तक आपका मेरा साथ है इस महफिल में। प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं अब आप कॉल करके 9202540 यानी 9202540 इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051। एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आतिर भाई, क्या हाल है? खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ जनाब।
1: फजल महमूद बात कर रहा हूँ आतिर भाई, कराची से शरद कॉलोनी वाला।
0: जी ठीक है, आप ठीक है जनाब?
1: यार बड़ा मुश्किल हो जाता है यार कॉल मिलाना, पहले तो बहुत इजी होकर मिल जाता था, अभी तो बहुत मुश्किल से मिलती है कॉल 101 इस्लामाबाद के।
0: ऐसा ही होता है हुजूर, ऐसा ही होता है, कभी मिल जाती है कभी नहीं।
1: मैंने इससे पहले यूसुफ भाई की ये शो में जो है ना काफी कॉलें की, ये पता नहीं क्या मसला आ रहा है, बीच में मुझे अपनी आवाज आ रही होती जब कॉल लगती थी, मेरी 5-6 बार मेरी कॉल लगती।
0: हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है?
1: बस आपका शो भी मैंने ज्वाइन किया आतिर भाई, आपको शो सुन रहा था, पोस्ट भेजी मैंने फेसबुक पे आपकी।
0: ठीक है,
1: मैंने बोला आतिर भाई को सुन ले, आपको तो पता है आपका शो शेरो शायरी वाला होता है, मैं मतलब सुनता तो हूँ, मुझे खुद शेरो शायरी में बोल तो नहीं सकता, बाकी मेरे कुछ दोस्त सुन रहे होंगे, नेता पच्चीस अमरवाली हो गई और डॉक्टर शफक हो गई, अगर कुछ अच्छा सा हो सके तो सोम बेटी के
0: चले। सबको सलाम पहुँच गया जनाब, सबको सलाम पहुँच गया, सलामत रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक हो?
0: बहुत अच्छा हूँ जनाब, बहुत अच्छा हूँ।
2: सियालकोट बोल रहे हैं जनाब, मोहम्मद अकरम।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ मने शाह जी, अल्लाह पाक तुहानू इज्जत दे, ईमान दे, मालिक दी जात बड़े करम ते फजल अता फरमाए,
0: आमीन, सलामत रहे।
2: शाह जी तुहाडे नाल गल शेयर करनी सी, जे अगर 2 मिनट 3 दे दे तो मेहरबानी।
0: 2 मिनट ले लें हुजूर, फरमाइए।
2: सरकार मेरे नाल एक क्रिश्चियन ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मैनू गल दसो जी, मैं क्या जी
0: ऐसे नहीं, एक मिनट ऐसे, मैं क्या गल दसो, उन्होंने कहा जी, ऐसे देर हो जाएगी मुद्दे की बात पे आज। अबू जी मैं क्या जी बेटा जी, ऐसे चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
2: नहीं सर, मैं उस मुद्दे से आने लगा, उन्होंने कहा है कि तुसी भी मुसलमान हो, सैयद भी मुसलमान है। मैं ठीक है, उन्होंने कहा तुसी भी कलमा पढ़ते हो, सैयद भी कलमा पढ़ता है, तो खुशबू नहीं आती, सैयद को खुशबू आती की वजह?
0: अरे हजूर
2: मैं जनाब, मेरी औकात की सी, बस तुहाडे घराने दे लज पाली सी, मैं उन्हें कहा मैं क्या मेरी गल सुन, मैं 10 नस्लां पिछे जाके पता नहीं हिंदुआ चो हाँ, सिखा चो हाँ, यहूदिया चो हाँ, किन्ना चो नहीं पता, असा सुन के ही मान लिया सैयद पैदाइशी मुसलमान है।
0: ठीक है,
2: दूसरे नंबर से मैं क्या खुशबू की गल की, तू तो खुशबू असी वजाहत कर दो, आया मैं ठीक क्या या नहीं, जरा इस वजाहत से जरा कर दो, ताकि चलो और मालूम
0: वो नस्बत है जिसकी
2: सुन रहा तो मजाहत हो जाएगी,
0: वो नस्बत है जिसकी इज्जत हुआ करती है। मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ, यकीन कीजिए, जब भी मुझे ये बात सुनता हूँ तो मैं बड़ा हकीर सा आदमी हूँ, मेरी क्या ही औकात है, वो नस्बत है जिसकी इज्जत करते हैं लोग, और उस नस्बत के बारे में मेरी जबान क्या कह सकती है, और अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और आप समझ गए होंगे, जो नस्बत सैयद के साथ जुड़ी है दर हकीकत इज्जत भी उसी की है, खुशबू भी उसी की है, हम नाचीज़ और बेकार इंसानों की मैं समझता हूँ कि कोई औकात नहीं है, जो अगर मेरी भी इज्जत कर रहा है तो मैं यही समझता हूँ कि वो वहाँ की इज्जत कर रहा है, मैं मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई मकाम नहीं है, तो इसके ऊपर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हजूर सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, बहुत
2: शुक्रिया,
0: आमीन आमीन, सलामत रहें, सलामत रहें। السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام عادل سید، کیسے مزاج ہیں؟ نذیر قصوری جی لیون اسلام آباد سے عرض کر رہے
0: ہیں. اچھا ہوں جناب، آپ ٹھیک ہیں؟
3: ماشاء اللہ اتنا زبردست، اتنا خوبصورت پروگرام ہے. 70 ایئرس کا ہوں اور آپ پیچھے مجھے 50 سال لے گئے ہیں سر. آپ کی بہت نوازش ہے.
0: سلامت رہے جناب، سلامت رہے.
3: مولا آپ کو اس زمان میں رکھے اور اتنی خوبصورت لفاظی اور انداز بیان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چند کلیاں نشاط کی چن کر مت تو محو یاس رہتا ہوں. تیرا ملنا تو خوشی کی بات سہی،
0: میں کیوں اداس رہتا ہوں
3: تجھ سے مل کر اداس.
0: تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا.
3: تو سر انشاءاللہ زندگی رہے. سر ایوری نائٹ آپ کے پروگرام میں ہوتے ہیں.
0: غم اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو جناب صرف اتوار کے اتوار آتے ہیں، ٹھیک ہے
3: جی سر؟ پورا ویک ہی
0: نہیں، اتوار کے اتوار جناب. جیسے آج اتوار پیر میں بدلا ہے تو میں حاضر ہوں اگلے اتوار کو انشاءاللہ اسی طرح، ٹھیک ہے؟
3: اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جی.
0: بہت شکریہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، آباد رہیے. جناب کالز کو کم ٹائم دیا، کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی کچھ کالز شامل کر لوں. السلام علیکم.
4: جی وعلیکم السلام، میں محمد اویس اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. عادل بھائی کیسے ہیں
0: آپ؟ بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں. آپ ٹھیک ہیں جناب؟
4: الحمدللہ بالکل بہترین. اور 2026 میں شاید آپ سے آج پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے.
0: ٹھیک ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں.
4: بہت اچھا آپ پروگرام کر رہے ہیں عادل بھائی. تو بہار رت میں اجاڑ رستے تکھا کرو گے تو رو پڑو گے. بہار رت میں اجاڑ رستے تکھا کرو گے تو رو پڑو گے، کسی سے ملنے کو جب بھی موسم سجا کرو گے تو رو پڑو گے. تمہارے وعدوں نے یار مجھ کو تباہ کیا ہے کچھ اس طرح سے، کس زندگی میں جو پھر کسی سے دغا کرو گے تو رو پڑو گے.
0: بہت اچھا.
4: کہ زندگی میں جو پھر کسی سے دغا کرو گے تو رو پڑو گے. میں جانتا ہوں میری محبت اجاڑ دے گی تمہیں بھی ایسے، چاند راتوں میں جو پھر کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے. چاند راتوں میں جو پھر کسی سے ملا کرو گے تو رو پڑو گے. اور وہ برستی بارش میں یاد رکھنا، تمہیں ستائے گی میری آنکھیں.
0: ٹھیک ہے.
4: تمہیں ستائیں گی میری آنکھیں کسی ولی کے مزار پر جب جب جب دعا کرو گے تو رو پڑو گے. کسی سے ملنے کو جب بھی محسن سجا کرو گے تو رو پڑو گے.
0: محسن صاحب نے یہ احساس دلانے کے لیے ان کو غزل لکھی تھی، اگر خود بتاتے ہوئے رو پڑیں گے تو پھر دونوں رو پڑیں گے. تو کوشش محسن صاحب کی یہ تھی کہ وہ رو پڑے تو ادھر تو آپ رو پڑے.
4: تو
0: سلامت رہے، آباد رہے.
4: ذرائع
0: تفنن میں نے یہ بات کی کہ اگر آپ حقیقت میں رو پڑے ہیں تو ہنس دیں تھوڑا سا. سلامت رہیے حضور، مجھے میرے ٹیمپو سے باہر لے آتے ہیں آپ لوگ. سلامت رہے، آباد رہے، بہت شکریہ. ایک اور کال لیتے ہیں جناب، مجھے میری کیفیت میں واپس جانا ہوگا اور اس کال کے بعد جاؤں گا. السلام علیکم. میں بہت اچھا ہوں جی.
5: اچھے
0: ہیں، اپنا تعارف کرائیے
5: جی.
0: اپنا تعارف کرا دیجیے. شیزا بات کر رہی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
5: میں آپ یہ کہتے ہیں اچھا، وہ تو سب کو پتا ہے.
0: وہ اچھی اردو میں حال کو بھی، حال بھی بیان اچھا کر کے کیا جاتا تھا. ہماری تو عادت ہے دریا کو کوزے میں قید کرنا. ہم چپ رہے تو اور غلط فہمیاں بڑھی، وہ بھی سنا ہے اس نے جو ہم نے کہا نہیں.
5: واہ.
0: چلے فرمائیے شیزا، کیا کہیں گی؟
5: بس حال سوچنا تھا.
0: वो तो आपको पता अच्छा होता है मेरा हमेशा।
5: मैं यही कहती हूँ आप सारे गाने चलाते हैं, मेरे गाने नहीं चलाते।
0: क्या मेरे आप गाने गाती हैं?
5: नहीं।
0: तो आपके कौन से गाने हैं?
5: तो जो एक दिन आपसे चलवाया था मैं चला दिया था, बड़ी खुशी हुई थी।
0: कौन सा कब मैंने चलवाया? नहीं ऐसी जसारत कब की? मैं तो किसी की फरमाइश नहीं चलाता।
5: आपसे दो हफ्ते पहले की थी, मुहर्रम से पहले।
0: मुहर्रम से पहले
5: क्या करूं मौला।
0: अच्छा चले, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चले, होगा ऐसा कुछ। और कुछ कहेंगे? आमीन, सलामत रहिए, आबाद रहिए। आमीन आमीन, सलामत रहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए। जरूर जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
6: अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: जनाब
6: क्या हाल है आखिर साहब? आप तो ठीक है?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाए।
6: आप अच्छे हैं लेकिन आपकी लाइनें ठीक नहीं है।
0: कौन सी लाइन खराब होगी मेरी? अच्छा वो वाली लाइन है ये देख
6: यार, एक लाइन में डिस्टॉर्शन है।
0: हाँ
6: एक लाइन में चली जाए तो बस फिर आप बोलते रहे, आगे से कोई आवाज नहीं आती।
0: अच्छा
6: लेकिन ये बीमारी है सर, ये ठीक होनी।
0: बड़ा नुकसान है ये तो,
6: मसला हो जाता है। आप ठीक है खैरियत से?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ जनाब।
6: एक कत्ता है
0: जी,
6: एक सर के नाम है। देखिए इस कत्ते को कि पहले कहते थे तुम जान मेरी, पता नहीं कितना सच है। बहरहाल
0: पहले कहते थे तुम जान मेरी,
6: अब मेरा नाम लेने लगे हो। अब मेरा
0: नाम लेने लगे,
6: नाम लेने लगे हो और सारी गुस्ताखियां करके मुर्शद मुझको इल्जाम देने लगे हो।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
6: बहरहाल गुस्ताखियां मेरी अपना एक कथा था, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूँ बड़ी। इस नज्म का उन्वान है आता सच।
0: ठीक है।
6: देखिए इस ख्याल को कि कुछ माँ ने कुछ बाप ने था सिखाया मुझे।
0: ठीक है।
6: कुछ माँ ने कुछ बाप ने था सिखाया मुझे, और जब मैं बड़ा हुआ तो हालात ने ये बताया मुझे। और जब मैं बड़ा हुआ तो हालात ने ये बताया मुझे, वो आधा सच था,
0: वो आधा सच था,
6: वो आधा सच था। और जब पूरा सच हाथ लगा तो पता चला, और जब पूरा सच हाथ लगा तो पता चला कि उस आधे सच के पीछे भेद क्या था।
0: अच्छा।
6: दिल में छुपा वो छेद क्या था?
0: दिल में छुपा वो भेद क्या था?
6: दिल में छुपा वो छेद क्या था? मैं इस आखिरी लाइन पे अपनी नज्म को क्लाइमेक्स पे छोड़ के जाऊंगा। आप बताइएगा कि हाँ वो था कि उस आधे सच के पीछे भेद क्या था, दिल में छुपा वो छेद क्या था, जिसे मैं अब तक सूद समेत लुटा रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है।
6: मैं अब तक सूद समेत लुटा रहा हूँ।
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
6: मैंने जब ये नज़्म लिखी आतिर भाई, इससे आगे भी मैंने कुछ लाइनें लिखी।
0: ठीक है।
6: वो उस्ताद ने काट दी।
0: अच्छा।
6: तो ये कहा मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गई है बात।
0: ठीक कहा उन्होंने ऐसे।
6: ऐसे इतनी वजाहत देने की जरूरत नहीं होती कभी।
0: सही बात सही
6: वो मैं
0: वो वही वाली बात
6: है। लगा नहीं मेरा ख्याल है ये मुकम्मल है। ये जो एक फिक्र आपने कह दिया ना सूद समेत बता रहा हूँ, तो वो कहता है ये इतना मुकम्मल जुमला है जिंदगी का कि जो बंदा इसको सोचेगा तो उसको समझ आएगी कि मैं कहाँ कहाँ पे ना। तो वैसे कहते हैं मुझे ये ख्याल कैसे आपके दिल में है, मेरे का सर बिजली का बिल बड़ा ज्यादा आ
0: गया। चलो ठीक है ठीक है, सलामत रहिए।
6: ये जिंदगी की सारी जिग जैग है
0: ऐसे ही है।
6: अल्लाह खैर करे, खुश रहे, दुआओं में याद रखिएगा।
0: बहुत शुक्रिया, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।
6: आबाद रहिए, सलाम अलैकुम।
0: حضور کیفیت میں واپس آنے کی کاوش اور کیفیت میں آ ہی جایا کرتے ہیں. یہ زندگی کی مسافت اور اس مسافت میں ہم دوڑتے ہوئے نہ جانے کس منزل کی جانب. وہ ایک ملنے کا شوق اور اس شوق کے بعد تعلق میں کوئی کجی. ہمارے ذہن کے نقوش دھندلے کر دیا کرتی ہے. وہ نقوش جو اس کھنڈر کمرے میں ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کھنڈر کمرے کی دیواروں پر لکھا کرتے ہیں. جب ہم خود سے نظریں نہیں ملا پاتے ہیں, جو اس کھنڈر کمرے میں ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کھنڈر کمرے کی دیواروں پر لکھا کرتے ہیں. جب ہم خود

और उस जीत की काविश में न जाने खुद को कहां कहां फिराते हैं, सहराओं की खाक छानते हैं, पाताल तहों को खोजते हैं, इंसान मुआशरती होते हुए भी कभी तन्हा रह जाता है, और वो जो तन्हा हुआ करता है न जाने कैसे कैसे उस तन्हाई को कबूल करता है, कैसे उसका इकरार करता है। मुश्किल हुआ करता है जब जब कुछ ख्वाब सजाए हों इंसान ने और उन ख्वाबों को अपने जज्बात से अपने शौक से मंसूब कर दे, तो फिर उस खंडर कमरे के मुकफ्फल संदूक को खोलते हुए कभी इस जीस्त की मुसाफत में मुजमहिल इंसान बैठकर उस सामान को छूता है। अक्सर कहा करता हूँ वो लम्हा बड़ा खूबसूरत है, और उस लम्हे की मंजर कशी करने की जो काविश है, अगर वहां तक आपको पहुंचा सकूं कि उस संदूक को खोलने के बाद वो तमाम अशिया, वो तमाम बेजान अशिया जिनमें कोई मकाम है, कोई सूखे फूल है, कोई खुशबू है, कोई मौसीकी है, डायरी में लिखे चंद अशार हैं जिसमें से कोई एक लफ्ज किसी एक आंसू से धुंधला हो चुका है, चंद सतरे हैं कोई मुस्कान है और कोई एक वजूद है। उस सामान को छूते हुए अपनी उंगलियों को जख्मी करते हैं, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने तसव्वुर के जोर पे, अपने तखय्युल की दुनिया में उस दौर में वापस जाकर उस दौर को जीने की खातिर। और ऐसे लम्हे बहुत कम मयसर आते हैं हमें, जितनी देर के लिए भी आए उन लम्हों को काविश हुआ करती है सदियों में जी लें और फिर वापस इस दुनिया में आ जाते हैं, जब रंगों से रंग चला जाता है, जब रौनकों से रौनकें चली जाती हैं, जब तन्हाई हुआ करती है और उस तन्हाई को तस्लीम करते हैं, वक्त लगता है लेकिन तस्लीम कर लिया करते हैं, मान लिया करते हैं कि जुदाई मेरा मुकद्दर है। शायद ये भी कुछ सिखाने के लिए ही हो, सब कुछ तो हमारी जिंदगी में हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है, यही कहा जाता है, यही सुनते हैं हम, यही फलसफा है जो चलाए रखता है हमें, जिंदा रखता है हमें, यही उम्मीद है जो दिया करते हैं हम किसी ऐसे शख्स को भी जो कांधा ढूंढता हुआ हम तक पहुंच जाता है और हमसे अपनी जिंदगी की कोई रुदात बयान कर देता है। तो हमारे पास भी तो यही अल्फाज हुआ करते हैं, और जब हमारा वजूद हमारे अपने सामने खड़ा हो जाता है, मुजमहिल, थका हुआ, हारा हुआ, तन्हा, तो हमारे पास उस एक खंडर कमरे के अलावा और उसमें रखा वो बेजान सामान, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं करता, हत्ता कि उस तन्हाई को हम तस्लीम कर लें, जो कि बहुत कठिन हुआ करती है, बहुत मुश्किल हुआ करती है।

शहर की रात और मैं ना शादो ना कारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दरबदर मारा फिरूं, है गमे दिल क्या करूं, है वहशते दिल क्या करूं। जल मिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी, है गमे दिल क्या करूं, है वहशते दिल क्या करूं। ये रो पहली इच्छाओं ये आकाश पे

तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन जाने, कौन समझे जी का हाल। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत है दिल क्या करूं। फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। हूक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत है दिल क्या करूं। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल। ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशत है दिल क्या करूं। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइयां, हर कदम पे इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयां, भर रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयां, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशत है दिल क्या करूं। मुंतजिर है एक तूफान बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वहां मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा अहद वफा मेरे लिए, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशत है दिल क्या करूं। जी में आता है कि अब अहद वफा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूं मैं ये आसरा भी तोड़ दूं, हां मुनासिब है ये जंजीर हवा भी तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का उमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। मुफलसी और ये मजाहिर हैं नजर के सामने, सैकड़ों सुल्तान जाबिर हैं नजर के सामने, सैकड़ों चंगेज और नादिर हैं नजर के सामने, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, शहर की रात और मैं ना शाद और ना कारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या।

शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। तुम सर बसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें। मैं अपने आप में ना मिला इसका गम नहीं, गम तो ये है कि तुम भी बहुत कम मिले तुम्हें। है जो हमारा एक हिसाब, उस हिसाब से आती है हमको शर्म के पे हम मिले तुम्हें। तुमको जहाने शोक तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरहमों बरहम मिले तुम्हें। अब अपने तौर ही में नहीं तुम सो, काश के खुद में खुद अपना तौर कोई दम मिले तुम्हें। और इस शहर हीला जो में जो महरम मिले तुम्हें, इस शहर हीला जो में जो महरम मिले मुझे, फरियाद जाने जा वही महरम मिले तुम्हें। देता हूं तुमको खुशकिए मिजगां की मैं दुआ, देता हूं तुमको खुशकिए मिजगां की मैं दुआ। मतलब यह है कि दामने पुरनम मिले तुम्हें। मैं उनमें आज तक कभी पाया नहीं गया, जाना जो मेरे शौक के आलम मिले तुम्हें। हर तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया, तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया। शर्मिंदा है कि उसमें बहुत खम मिले तुम्हें। और यूं हो कि कोई और ही हवा मिले मुझे, यूं हो कि और ही कोई हवा मिले मुझे, हो यूं के और ही कोई आदम मिले तुम्हें। तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया, शर्मिंदा है कि उसमें बहुत खम मिले तुम्हें।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब एफएम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाज़त लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो काविश हुआ करती है कि आपके तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं। हुजूर, ये मिलने का शौक, ये मोहब्बत के एहसासात और जुदाइयों के कर्ब और तन्हाई की अजियतें, ये सब जिस्त का हिस्सा है। कितना आसान जुमला है। हम इंसानों को उम्र लग जाती है इस उम्र को समझने में, इस जिंदगी को समझने में। ये जज्बात हमारी जात के अंदर हैं, हमें वदियत कर दिए गए हैं, हमारे अंदर मुंजमिद हैं। तो उभरते क्यों हैं, सामने क्यों आते हैं? सामने आते हैं और जब हम इनसे सरशार होते हैं तो फिर ये हमें तकलीफ क्यों देते हैं? और जब तकलीफ हुआ करती है तो हम संभलते क्यों नहीं हैं? और जब संभल जाते हैं तो हमारे जहन के नेहा खानों से वो मुनक्कश तहरीरें मिटती क्यों नहीं हैं जो हमारी जिंदगी में वबाले जहाँ बनी रहती हैं? हम इंसान ऐसे कई सवालों के जवाब तलाश करते रहते हैं। हम कभी इस क्यों से निकल नहीं पाते हैं, लेकिन कैसे हुआ करता है हमारे पास? क्योंकि इरादा और इख्तियार दिया गया हम इंसानों को, वो वाहिद मखलूक जो खाली जहन इस दुनिया में आती है और इरादा रखती है, इख्तियार रखती है। तो अगर यूं हो कि इन जज्बों को हम जब इनसे आशना होने लग जाएं और समझने लग जाएं, तो कैसे इनका इस्तेमाल करना है और कहां पर ये हमारे लिए कारामत साबित हो सकते हैं, इसके लिए भी एक शऊर चाहिए, एक जहन चाहिए। वहां तक हम पहुंच पाते नहीं हैं, वक्त लग जाता है, ठोकरें खाते हैं और फिर कहते हैं कि ठोकरों से बहुत कुछ सीखा है, जबकि बहुत कुछ सीखा नहीं होता हमने। हमें यूं लगता है कि बहुत कुछ सीख चुके हैं। वसतें बहुत हैं इस कायनात की, वसतें बहुत हैं इन जज्बात की। एक तिनके पर बैठी हुई एक चूंटी के लिए पानी का एक कतरा उसकी कयामत है, और हम कहते हैं कि हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। नहीं, लोग नहीं समझते हैं, अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब समझते हैं। लेकिन जब गौर करें कि ये जज्बा अगर हमारी जात के अंदर वदियत कर दिया गया तो फिर गलती कहां पर हो रही है? तो गौर करने पर मालूम पड़ता है कि गलती हम ये कर दिया करते हैं जब इसको किसी एक शख्स से मंसूब कर देते हैं और महदूद कर देते हैं। ये जज्बा महदूद नहीं किया जाता, ये अपनी जात के अंदर इतनी वसत रखता है कि अगर इसको महदूद किया जाएगा तो ये बाइस इज़्तिराब ही बनेगा। मोहब्बत तो वो शय है कि बस किया करे कोई। अगर हम नजर दौड़ाएं इस कायनात में तो हर शय में मोहब्बत नजर आएगी। ये जो रंगों में रंग है, ये जो फूलों में रंग है, ये जो फूलों में खुशबू है जो माहौल को मुअत्तर करती है, ये जो बादलों का बरसना है जो खुनकी का बायस बनता है, ये जो सूरज की तमाजत है, ये जो तारों का चमकना है, ये जो झरनों का बहना है, ये जो बारों पहाड़ हैं, ये जो बहती नदियां हैं, ये जो परिंदों की मौसीकी है, और फिर इस कायनात पर नजर दौड़ाते दौड़ाते जब हम अपनी जात तक पहुंचते हैं तो जो हमारी जबान पर जायके हैं, हमारी आंखों में
बसारत है हमारे कानों में, समात है। हम जो हिस्से लामिसा रखते हैं, हम जो तवाजुन बरकरार रख सकते हैं। अगर इन सब नेमतों को एक लफ्ज में बयान किया जाए तो यह मोहब्बत ही तो है, वो मोहब्बत जो खालिक कायनात ने की इस कायनात से और इस कायनात में बसी उस मखलूक से जिसको उन्होंने आहसने तकवीम कहा, वो मखलूक जिसको रास्ता दिखाया और उस रास्ते का नाम बताया सिराते मुस्तकीम, और उस कैफियत से आगाह किया जिस कैफियत को वो अनमत अलैहिम कहते हैं। शुक्रगुजारी के मानी सिखाए और कहा कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। जब तकलीफ आई और मालूम पड़ा कि सब्र करना है तो सब्र की कैफियत से आशना करते हुए ये बशारत दे दी कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। मुश्किल आई तो ये कह दिया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम मायूस हुए तो कहा कि बहुत जल्द कुछ ऐसा अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। हम नाउमीद हुए तो कहा कि मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। जहां जहां नजर दौड़ाई जाए मोहब्बत की तलाश में तो मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है, और वो राह जिस राह पर चलते हुए इंसान इश्क के हकीकी मानी समझ जाता है कि मंजिलें खूबसूरत हों तो राहों से मोहब्बत हो जाती है, फिर राहों में आने वाले पत्थर रुकावटें रुकावटें रहती नहीं हैं। मंजिलें खूबसूरत हों तो राहें खूबसूरत लगती हैं, फिर इंसान झूमता चला जाता है, झूमते झूमते हर रुकावट को हर परेशानी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए बर्दाश्त करता चला जाता है, क्योंकि फिर परेशानी परेशानी नहीं रहती है, फिर तकलीफ तकलीफ नहीं रहती है, नुकसान नुकसान नहीं रहता, मसलहत बन जाता है। यहां होना ना होना है, ना होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए। और खाके दरे जाना क्या है, खाक ही तो हैं हम और खाक की तखलीक है। दरे जाना को पहचानने में देर कर दिया करते हैं, ताखीर कर दिया करते हैं, और उस राह पर चलते हुए जब मालूम पड़ता है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्द जुलुमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाऊंगा, तो अगर नूर की तलाश करने लग जाए तो मालूम पड़ जाता है कि ये मोहब्बत और ये नूर यही इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, यही सब कुछ है, बाकी तो बस एक सफर है और रखते सफर है, पड़ाव हैं चंद लम्हों के और वो पड़ाव गुजर जाएंगे। जुलमात से निकल के नूर की जानिब जाता हुआ शख्स जब ये कलिमात सुनता है कि अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्ज, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि और कुछ नहीं है, फिर उसका वजूद भी रोशन होता है, उसका आसमान भी रोशन होता है, उसकी जमीन भी रोशन होती है, और फिर राब्ते कायम हो जाते हैं दिल की धड़कनों से समीओ बसीर तक के राब्ते, और मोहब्बत की हकीकत को समझता हुआ इंसान, डोर को सुलझाता हुआ इंसान मोहब्बत के मानी समझ जाता है कि महबूब के महबूब को भी चाहना है, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब के महबूब को भी चाहा जाए। तो जब कायनात की हर शय में मोहब्बत है तो फिर हमारे दिलों में कुदूरत कैसे, हमारे दिल में नफरत कैसे, फिर वहां वो डेरे नहीं डाल सकते, फिर वहां वो नहीं रह सकते जो बस मोहब्बत है, जिन्होंने इस कायनात से मोहब्बत की,
اپنی مخلوق سے محبت کی. تو اگر محبت کی راہ پر چلنا ہے تو محبت کرنی ہوگی ان کی محبوب خلقت سے. جو چاہیے وہ بانٹنا ہوگا, وہ تقسیم کرنا ہوگا. خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹیے, آسانیاں چاہیے تو آسانیوں کا سامان پیدا کیجیے. اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبا ہوا کانٹا نکالیے. رب تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا. اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو سو معذرت چاہوں گا. سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

नगमा सरा कुछ गजलों के हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के बेजज्बा शौक सुनाए क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताए क्या।

और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तकामत के दहाने खोल दे और हमें मारियो तो मुसलमान ही मारियो।

तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार।

और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साएबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो, और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करो ताकि बच जाओ।